0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी संबलपुर श्रोता बंधु आपने कार्यक्रम सुनुंट आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र आपर कार्यक्रम मन को न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल आप संगे संगे एफएम 101 MHz सुनिपर आकाशवाणी संबलपुर आमर परवर्त कार्यक्रम ओडियारे संवाद एवं परिपरे शुणिपर जिला हलचल और प्रायोजित कार्यक्रम बनाने रिले करी प्रचार करुचु आकाशवाणी कटक केन्द्र रो।
2: आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती चंदन घोष मुख्य संवाद। देशर तृतीय सेमिकंडक्टर प्लांट को आज गुजरात रे लोकार्पण कले प्रधानमंत्री। आसंता 20 तारिखर आरंभ हेबो संसदर मौसुमी अधिवेशन। ईरान रो पूर्वतन सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेईंकर अंत्येष्टिक्रिया कार्यक्रम आज आरंभ। द्वितीय T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे इंग्लैंड विपक्ष रे टॉस जीती प्रथमे बैटिंग करबा को भारतर निष्पत्ति एवं फीफा विश्वकप टूर्नामेंट रो 16 पर्याय आरंभ हेबो आज थारु। भारतर सेमिकंडक्टर मिशन को एक प्रमुख प्रोत्साहन स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संध्या रे गुजरात गस्त करी सानंद ठारे सेमिकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण केन्द्र रो उद्घाटन करिसंती। 7500 कोटी अधिक टंका व्यय रे निर्मित एही प्रकल्प देशर सेमिकंडक्टर निर्माण क्षेत्र रे एक प्रमुख माइलखुंट भाबे सब्यस्त हेबो बोली कहा जायछि। एही केन्द्र रु वार्षिक 5 बिलियन पर्यंत सेमिकंडक्टर चिप उत्पादित हेबार सुविधा रहिछि। या द्वारा विश्वस्तर रे ए क्षेत्र रे देखा दुथिबा क्रमवर्धिष्णु चाहिदा पूर्ण करबा दिगरे एही सेमिकंडक्टर प्रकल्प सफल होई परिबो। एही अवसर रे आयोजित एक समावेश रे उद्बोधन दे श्री मोदी कहिछंती भारत जो प्रकल्प लागि थरे संकल्पबद्ध हुए ताहाकु संपूर्ण करबा दिगरे निजर प्रतिबद्धता प्रतिपादित करिथाय बोली आजर ही सेमिकंडक्टर प्रकल्पर लोकार्पण रु प्रतिफलित हेउछि। 5 वर्ष पूर्वे देशकु एक सेमिकंडक्टर हब रूपे परिणत करबा लागि संकल्प निया जाइथिला। मेक इन इंडिया ओ डिजाइन इन इंडिया मंत्रकु नै देश ए क्षेत्र रे अग्रसर होइथिला। यहार फलस्वरूप आज चिप उत्पादन लागि देशर तृतीय सेमिकंडक्टर प्लांट संपूर्ण प्रस्तुत होइछि बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी मतव्यक्त करिछंती।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: एही समावेश रे उद्बोधन दे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिछंती प्लांट रे उत्पादित हेबाक थिबा चिप्स गुडी को कार स्कूटर एवं विभिन्न शिल्पानुष्ठान रे व्यवहृत होई परिबो। एतद् व्यतीत भारत रे निर्मित चिप्स गुडी को एणिकी जापान अमेरिका एवं यूरोप को रप्तानी करा जिवो। सेमीकंडक्टर प्लांट ऊपर आलोकपात करी श्री वैष्णव कहिछंती
4: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिनिकिया राजस्थान और गुजरात गस्तरे जाइछन्ति। प्रथमे से राजस्थान गस्त करी 1,06,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व मूल्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिछन्ति। एही प्रकल्प गुडिक मध्यरे पेट्रोकेमिकल्स सहरांचल परिवहन रेल एवं सड़क जोगाजोग नवीकरणीय शक्ति और विद्युत परिवहन आदि क्षेत्र अंतर्भुक्त। जोधपुर विमानबंदर नूतन टर्मिनल अट्टालिका को उद्घाटन करने प्रधानमंत्री बालतारा

नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मानंकु आजिर बनानी कार्यक्रम को सबुज स्वागत। अति जतन रे स्नेह सहित चारा टीए देले रोई हसीब धरणी हसीब बनानी हसुथिबा मे भाई आम चारि पाख लागिब जेमिति सबुज सुंदर भरा आखिरे मनरे केति जे सपन नीति देउथिब धरा। हाँ श्रोता बंधु, रोइले गछ परिवेश आम होइब स्वच्छ। एई स्वच्छता ही पवित्रता। पवित्रता आसिब सेतेबेले जेतेबेले आमे माने पूर्ण मात्रारे निजकु समर्पि देबु गछर सेवारे। गोटिए छोट शिशु को आमे जेमिति स्नेह आदर करुछे ताकु लाळन पालन करी भल मणिषटिए गढ़ी तोळुछे, ठीक सेहीपरी गोटे छोट चारा को भल पाई बसिबा ताकु मन ध्यान दे जत्न सहकारे लाळन पालन करी छोट चारारु महाद्रुमरे परिणत करिदेबा। आउ सीए दब आम मानकु जल ठारु जाळेणी जाए सबु किछि देखेइबो जीवन आउ जीविकार पथ शिखेइबो जीवार नूतन कौशल ता सहित सुख समृद्धि ओ संभावनार नूतन दिगंत आमरी भल पाइबार बंधन रे से बांधी हेइजिबो आपे आपे। आउ सबुदिन पाई आम सेवा करि चलिबो खरा बर्षा शीत काकर को पादरे आड़ेई दे आम पाई जीवन देइदब। तेणु आसंतु ना आमे भी जीवन देइदब तारी पाई। बिल बाड़ी हुड़ा ठारु आरंभ करी अनाबादी आउ पतित जमी स्कूल कॉलेज खाली थिबा स्थान रे रास्ता कड़े बहुत परिमाण रे वृक्षरोपण करी परिवेश को सुस्थ सुंदर और निरामय रखिबार संकल्प नेबा एबे ठारु। हाँ श्रोता बंधु, एबे ठारु काहेकि ना जुलाई एक तारीख ठारु सात तारीख सात दिन जाए ए महोत्सव सप्ताह रे सामिल ही अति कम रे सात दिन रे सातटी गछ रोपण करी ताकु महाद्रुमरे परिणत करिबा पई शपथ नबा। प्राकृतिक पर्यावरण को आखि आगरे रखी जन सचेतन नागरिक हिसाब रे

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल।

लेकर के हमसे पूछती हो। अपनी धरती, अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया छिप छिप कर मत देखो।

0: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो हमरी नजर भर जाएगी हमरी नजर भर जाएगी नजर भर जाएगी नजर।
1: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

संगीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू, अंगुली।

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा, द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री, दाल में काला, कारीगर नवरंग।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और सारंग।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई।

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open